0: सुमित मैं हम लोग दस बजे
1: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ। 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा

0: सुनोस ना, आइले हम लोग आने में 10 बजे तक छा।
1: इस समय को साथ में जितू सुनचांदी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजीक आई जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

भरी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटाऊ कन्फ्युजन ग्याप द सोलुसन इट्स द कुल धुली डट कम ग्याप द सोलुसन इट्स द कुल धुली डट कम

TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैश बैक तथा श्योर शॉर्ट गिफ्ट, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस।